हार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक बनी र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

प्याक तथा सियोर शॉट गिफ्ट्स। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक, डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 161 र 98 5550 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4934 5880 र 98 5550 2640
3: It's 9 o'clock अहिले 9 बजेको छ
4: सिंगो नेपाल र सारा नेपालीको आवाज

डांसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर साउंड गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।